0: गोपी नी काली नी काकी ना खाई नी सारी खाई दोरी खाई लानी को अल्लाह
1: देखो साईना
0: मैंने ना तो मतलब नहीं ना करो हाँ भाई कौन हाथ और जोड़ी कर
2: तड़क कुर्सी ना
0: खाई गोल बैठी है
3: अजी
0: अजी आ चक्रवाहु ना लाइन कॉलम का रुख का वो माफी चाहे रहो
3: ये रे कौन
0: मसाय रे गोशी बोलो
3: हरी हरी
0: ओम पुरा
3: हरी

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: श्री एम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन चोटिला चामुंडा भगवती द्वारिका पुरी द्वारिका दिश दर्शन गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान नागेश्वर गोपी तलाव भेड़ द्वारका बिन्दु सरोवर मातृ गया पिण्डदान पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मंदिर ब्रह्म सरोवर अम्बा देवी दर्शन वृंदावन मथुरा गोकुल रमन रेती काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान चौरासी घाट दर्शन प्रयागराज अंतिम गंगा स्नान श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश खाना बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ समय अवधि 42 दिन रहनेछ प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी सम्पर्क नम्बर 9841870793 9841870793 साधो बाटो चरीकोट दोलाखा महादेव महान
1: भोले सदा शिव शिव शंकरा। यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो। यति बेला बिहानको 11 बजेको छ।

0: ¡Pues cabrón! ¡No sigáis eso, no!
1: बाइक वाले ले पटन लागी को होगी क्या हो?
2: कल्ले बने हो?
1: बन्नू पोर्सा रहो, बिक्रम बन्ने बिट्टी के लागले बुत्तक कहीं उनसे?
2: बिद्दा कसम?
3: बादल तबे बन्नू पची हुरुके था।
2: होइनो ला?
3: था, तबला बेटी पची रोमांटिक होना था लेते।

0: TBS ファイナ सम्बन्ध हो।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

विक्रम सम्बत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क 9852445779 9849924409 9844994913 9141969945 9844456550 आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

नमस्कार रेडियो शैल सामुदायिक एफएम बैंड में थपलो 7 मेगाहर्ज बाट मुबदे प्रसाद साहब कोटा आज विक्रम सम्वत 2083 साल भाद्र शुक्ल पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 26 तारीख आश्विन 10 गते शनिबार आज शरादे पूर्णिमा व्रत हो दक्षिणायन अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो सक्षेण कल्पय भरी।

आनन्दकन्द श्री सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। प्रेम छित बोलिए श्री आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगवान को जय, श्री सद्गुरु महाराज को जय। सबै गुरु परिवार को जय, सबै संत महात्मा को जय। सपन